मूर्ख पंडित कुमत संजय कृ प्यार धर्मी तन करे गावे मंगे मुख द्वार जति सदा वैज

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ देव गंधारी पंजवा

पैखारों हों कर चतुराई। हों मतलब मैं, चतुराई करके कर दे रारे नूं सिहारी है कि मैं चतुराई करके कित्थे दिखावां, कित्थों दिखावां, किहड़े रूप विच दिखावां, किहड़े रंग विच दिखावां, भी उह कैसा है। पिछले दिनी आपां विचारिया किस पह देख कहूं तूं कैसा, मैं किहड़े पास्यों देख के कहां भी उह ऐसा है, उह ऐसा है। मैं चतुराई करके भी दसन लगा ना तां भी नहीं दसिया जाना, क्योंकि चतुराई तां कम आउणी नहीं, ना सियाणप ना चलाकी। यह दुनिया अगे ही चल सकती है, तुसी जिन्ने मर्जी चतर चलाक होवोंगे ते दुनिया तुहाडी वाहवा कर सकती है, पर इत्थे चतराई चलाकी सियाणप कम नहीं आउणी, क्योंकि उन्हूं पता है कि यह किन्ना चतर चलाक है। दुनिया नहीं जानती, दुनिया अगे पड़दा पिया होया, तुसी जिन्ने मर्जी चतर चलाक होवोंगे दुनिया ने तुहाडी वाहवा करनी है, पर परमेश्वर दे दर ते नहीं। उत्थे चतर ये चलाकियां ये चतराइयां सियाणपा कम नहीं आउंदियां। इसलिए अपने मन नूं असीं नेम दे विच, जिहड़ा नितनेम दी बाणी दा अभ्यास करदे आ ना, उहदे च ही सानूं बड़ा कुछ सिखण नूं मिलदा है। पर सिखीए तां ना, जे असीं सिखण लई पढ़ रहे, असीं ते उह फॉर्मैलिटी है, रसम है कि बस उठ के ये बाणी दा पाठ करना ही करना है, ते कीता ते हो गया, कीता ते हो गया, पर कदे समझिया ही नहीं भी उहदे विच समझाया की जा रहा है। रोज रोज असी उठ के नेम नभाउंदिया होया अपने मन नूं आवाजा देना है, ये मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। रोज पढ़दे हां अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा। ये वाहिगुरु जी तू अगम है अगोचर है, तेरा अंत किने पाया, किसे ने भी नहीं पाया, ना चतराई नाल, ना चलाकी नाल, ना सियाणप नाल। इसलिए महाराज कहिंदे मैं चतराई वरत के चलो लोकां दे सामने दस भी दियां, पर कित्थों तक दसा, वो किद्दां दा है। ये खुद अपनी गल कर रहे हैं गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्हां नूं असीं प्रतख हर कहिंदे आ। महाराज कहिंदे नहीं, मैं भी नहीं दस सकदा, चतराई करके दस भी देंगा, पर वो तो जानदा है ना। कह पेखारों हों कर चतराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात। जिहड़े कह रहे ने और जिन्हां कोलों वो कहा रहा है, तो सुनन वाले बिस्मे हैरान हो जाते ने भी वो ऐसा है। हुण इह भी ध्यान रखियो थोड़ा जिहा, जे उहदी उस्तत करनी है तो मैं नहीं कर सकता, जे उहदी उस्तत करनी है ना तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वो करवाएगा तां हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। कबीर साहब जी साडे वांगू ही जन्मे आ, साडे वांगू ही उन्होंने जन्म लिया, साडे वांगू ही उन्होंने पालन पोषण होया, पर जिस दिन भगती दे रंग विच रंग गए उस दिन कहिंदे मैं नहीं बोलदा, वो बुला रहा है। हुण बुलाउण वाला बुला रहा, इहदे विच कबीर जी का एक भी बोल नहीं है, ते जे एक भी बोल हुंदा ते फिर गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं सी आउणा। ये उहदे बुलाए हुए बोल ने तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच ने। हां आपो बोलना जानदा, मेरा अपना बोलिया हुण कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुलाया बोली खसम दा, हुण वह खसम दा बोलिया। जिहड़े मुहम्मद साहब ने, ये पहला मुहम्मद साहब ही आख्या, इन्हां नाल पैगंबर नहीं सी जुड़िया, पर इन्नी कमाई इन्हां ने कर ली कि घरवाली हुण रोज घरवाली रोज कोल रहिंदी है, रोज बोल सवेरे शाम सुनदी है, उहनूं पता है भी इह मुहम्मद साहब जी दे बोल ने। पर अज जिहड़े बोल उहनां दे मूहों निकले ते घरवाली ने आख्या अज इह बोल तुहाडे नहीं है, ये तुहाडे बोल नहीं हो सकते, मैं रोज सुनदी हां तुहानूं, पर अज तुहाडे बोल नहीं,
अज मैनू लगता जिवें खुदा बोल रहा है, अज मैनू लगता जिवें रब बोल रहा है। ये जिहड़ा मुख तो पैगाम है, ये उस पैगाम उस खुदा ने भेजिया है। उस दिन पहली बार पछाणिया, देखो बेबे नानकी ने पछाणिया ना भी गुरु नानक साहब कौन है, दौलता दाई ने पछाण लिया ना गुरु नानक साहब कौन है। इसे तरह घरवाली ने पछाण लिया भी हुण तुसी पैगंबर हो, क्योंकि तुहानू उस खुदा का पैगाम आना शुरू हो गया, पैगंबर हो तुसी। इसे तरह 15 भगत साहबान साडे वांगू ही जन्म लिया, साडे वांगू ही खांदे पींदे पालन पोषण है, पर जिदन रंगन रंगो सीवन सीवो राम नाम बिन घड़ी ना जीवो वाली खेड बन गई। उस दिन बोल उस परमात्मा दे ने, रब दे बोल ने। इस वास्ते हुण सतगुरु महाराज कहिंदे ने हौं कर चतुराई, मैं चतुराई करके कह पैखारों किवें बयान करां कि वह किस तरह का है, नहीं किया जा सकता। हाँ कहन कहात, ओ वाले कहन मतलब कथन जिहड़े उन्हें कहाए आ अपने बारे, क्योंकि अपने बारे वह आप ही दस सकता है, होर कोई नहीं दस सकता। जदों वह कहाउंदा है मुख तो, ते जदों कहन वाला बोलदा है ते सुनन वाले विस्मय हैरान हो जांदे आ कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है, हैरान हो जांदे आ सुनन वाले कि असी तो कदे सोचिया भी नहीं, साढ़े तो कदे सोच मंडल विच भी नहीं आया भी वह ऐसा हो सकता है। जिन्नी भी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी, उहदे विच किते नहीं लिखिया ये मेरा बोल है। जदों भी आख्या गुरु नानक साहब तो वड्डा कौन है, महाराज कहिंदे जैसी मैं आवे खसम की बाणी, वह पैगाम वह पैगंबर बने आ पैगाम, कहिंदे जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जिद्दां मैनू खसम दी बाणी आ रही है मैं उद्दां ही गा गा के तुहानू सुना रहा हाँ। जिन्ने प्रेम विच बाणी आ रही है उन्ने प्रेम विच भिज के महाराज ने गाया सुनाया भी है। एवें थोड़ी सुन मुन नगरी भई, जदों महाराज गए आ वह सुन मुन नगरी एवें थोड़ी हो गई है, वह हैरान हो गए ने भी अज इत्थे केड़ा गाउण वाला आ गया जिन्हों सुन के अंदर सुन अवस्था बनती, फुरना ही सुन हो गए अंदर, हुण कोई दुनियावी फुरना बनता ही नहीं पिया, क्योंकि एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। खैर सतगुरु महाराज कहिंदे ने बाणी विच साहब ने कहा धुर की बाणी आई, ये धुरों आई हुई बाणी है, जदों मुख तो निकल गई तो यह गुरबाणी बन गई। आई तो बाणी है ना उत्तों, उस मालिक दे घर तो बाणी आई है, पर जदों मुख तो उचारण होया तो गुरबाणी, जिदे राही सानू एक खजाना मिलिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के रूप में। इसलिए सतगुरु महाराज जी आखते ने मैं कितों तक किवें बयान करके दसा जां दिखावां भी वह कैसा है, चतराई करके नहीं दसिया जा सकता, चलाकी नाल नहीं दसिया जा सकता। तुसीं पिछले समय च भगत धन्ना जी का दिहाड़ा मनाया, जिस पंडित जी कोलों वो लैके आउंदे आ पत्थर, ते जिहड़े वो पत्थर की पूजा करदा वो ते उन्हें दिता ही नहीं, साल ग्राम वो ते उन्हें दिता ही नहीं है, उन्हें ते आम पत्थर जिहड़े पए होंदे आ उन्हां विचों ही चुक के दे दिता, बस उहदे नाल ऐसी लगन लग गई, सुरत निरंकार नाल जुड़ गई। ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गोसाइया धन्ना वडभागा। वह जदों भगती अंदर जाग लग गया, पर भगती का अर्थ है भरम के पड़दे खुल गए, जदों अंदर खेड समझ आ गई उहदी, हुण वह जिहड़ा असल सालग्राम लैके बैठा होया है उहनू नहीं पता लगा रब की है, ते जिहड़े आम पत्थर चुक के जिन्हों दे दिता उहदे भरम दे पड़दे अंदरों खुल गए, ते भगती दा जाग लगा, मिले प्रतख गोसाइया। पर भगत जी नूं पुछिया भी वह किदां दा दिसदा है, की करदा है, की करदा है, भगत जी कहिंदे बस मैं इक्को ही गल कह सकदा
कि जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवार। वो किदां सवारदा ये नहीं मैं दस सकदा, वो किहड़े रूप च आ जाए, किहड़े रंग च आ जाए, किहड़ी अवस्था च आ जाए, नहीं बयान किया जा सकता। बस ये किया जा सकता है कि जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवार। वो किदां सवारदा है संतां के कारज, आप खलोया वह किदां खलोया ये नहीं दसिया जा सकता, यह नहीं बयान किया जा सकता, वह कथन तो परे है। पर वो है, वह वरतदा है, वह विचरदा है सारियां दे विच। मेरे शाह तू सारियां च वरतदा, पर किदां वरतदा ये अवस्था नहीं बयान की जा सकती। फुल दे विच रंग किदां भर दिते ये नहीं पता लगता, भरे तो उन्हें ही ने ना, सबे रंग नारायण ने भरे तो उन्हें है, पर किस तरह भरे है ये नहीं दसिया जा सकता। धरती घूम रही है, वह किदां घुमा रहा है ये तो वही जानता है। इसलिए सतगुरु महाराज पातशाह कहिंदे कह पेखारों, मैं कित्थे दिखावां, हों कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात। जदो अपने प्यारियां तो मुख तो कहाउंदा है, सुनन वाले हैरान हो।

रख लीनी हर मेरे कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचार कोई माटी का क्या तो स्वामी मानस की गत एही।

करुणा मैं सब दुख हरो सो कहो टल गुर सेविय एहनस सहज सवाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिय तुदठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिय सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे साह सतनाम

रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुकनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुम रह सुतरता।

रस, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमारी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलें त्रिपता सही, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लघास, धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मान चितवहे उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बाईता, कोय ना किसकी तरया, सिर से रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया, ऊडे ऊड़ावे सै कौंसा, तिस पाछे बचरे शरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में ही सिमरन करया, सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया, सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया, राग अस महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा, सब ते आवहीं सब ते आवहीं तुद जी, हर सच्चे सिर जनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर ते आवहो संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हरे आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बडाणा।

होई। दुष्ट शाह शवय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसते ताहें ओबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दुख दे रहा।

सरधर्म हो सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई सोइया पाए गहे जबते तुमरे तबते कोहूँ आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभा बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो।

राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सै सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दों ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहिबा क्या ना ही घर तेरा घर दां तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जिनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां एह वड़ियाइयां कह नानक सुन हो संत हो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तें सुख होआ तित कर अनहद भाजी आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाए आ उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे

सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावणी।

स्मृतिनाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अदारो, जे को खावे जे को भुंचाए।

0: तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जत नाही मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, हपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जी मा, तन मन थीवे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहर दास, जियो पिंड सब तुम मात पिता हम, तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा उचेते। सगल

मत पत दा राखाप वाहिगुरु हे अकाल पुरखाओ अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जिया।

रहे तिन तिल नहीं कीमत जन्नी रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मंतन्नी डिगे न डुल्ले दृढ़ कर रहे आओ पूरन होए त्रिपतन्नी ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिलन्नी अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक बखानी प्रगट आओ जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कह नानक निहचल कर बांधे गुर की बंदनी प्रगट अजोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कह नानक निहचल कर बांधे गुर की बंधनी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊँचे ते ऊँच सगल समग्री तुमरे तुम ते हो इस तुमरी गात मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती

रे एकालड़ी कोर लाए नानक सातन मिले मिलाई बेन प्रीतम दुख पाए सो कहो टल गोर सेविय एहनस सहज सुभाई दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम्मदि नूरे अरिशाह कर शाह चटी तोद डिठे सचे पातिशाह

सवैये मोहल्ले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मलनासी सतगुरु चरण कवल रिद तारं गुर अर्जुन गुण सहज विचारं गुर रामदास कर कियो प्रगासा सगल मनो

भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन माणक संतोखेओ गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दर्शायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास अन पो ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग आलीना गुर शब्दे मन मान्या अपतीज पतीना गुर नानक सच नीव साज सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो सुजस कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान।

जिन पारस परस मिलायो, जय जयकार जास जग अंदर, मंदर भाग जुगत शिव रहता, गुरपुरा पायो बड़ भागी, लिव लागी मैदन पर सहता, पै पंजन पर पीर निवारन, कल सहार तोहे जस बकता, कुल सोडी गुर रामदास तन, धर्म तुजा अर्जन हर भगता, त्राम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन, शब्द सार हर साम्य उधार, अहमेव निवारन, महादान सत गुर ज्ञान, मन चाहो न हुटे, सतवंत हर नाम मंत्र नवनिद नानक हुटे, गुर रामदास तन सर्ब में।

अवतार अमर सतगुर थिर कियो, अमर दास अमृत छतर गुर राम दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुर

नाम सत संतोख तरयो और आदि पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगटे ज्योत जग मगे तेज पू मंडल छायो पारस परस परस पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो काल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्टि लग

अंत न पावत देव सवै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन बेद बिरंच विचार रहियो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा मथुरा।

जग और न जाए महात्म मैं, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गे, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। यह पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद विभेद न जान बियो। परता श्रीदे

काल समुदर पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस है संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानियो भयो तह संसर सोई तरन

सजन सचा पात साहो सिर सहां देसाहो। जिस पास बैठियां सोहिए सबना दिसा हो। जिस पास

श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा ईशापूरक सर्व सुखदाता हर